खरीदिलेल्यायो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन एसी को कम्प्लिट रेंज 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हरेक घरको खुशी घर घरमा एलजी एलजी लाइफ

0: मैं सारे काम काज करूँ, तेरे गुस्से में के ईगो का मसाज करूँ, तेरा रूम का जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके FIR में लॉज करूँ। जानती है कि मैं तुझे पे चलाऊँ, ये जानती है तेरी आत्मा को मिलती ही शांति है। मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूँ मैं तेरा झूम का।
1: झुमका

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। Baby let's go right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: Yes.
1: Don't let me.
2: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।
3: शेख ये बात ही गया।

0: Dagen.
1: वो बदल गया
2: रखूं ना तुझ कोई विशंका अपने प्यार का बजा दो डंका तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दूं लंका छोड़ छाड़ के दुनियादारी बस तेरे पीछे पड़ गया मैं सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं